सारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरा स्वामी सो कमन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ जिस देह सो पावे सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द के नेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जी दिया वडियाइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दुर्त वस के ते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुर

सोचाए सोच न होवै जे सोचि लाखवार चुपाए चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी दे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पा लख हो है ता इक न चल नाल केव सजारा हो।

तीर्थ नावा जित भावा बिन पाने के नाय करी जित सिरट्यो पाई वेखा बिन करमा के मिला लई मत विज रतन द्वार माणिक जेक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नमा खंडा विच जानी है नाल चल सब कोय।

देखो खाए के आखण पाए, ओहो जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे आखें से पे के जिसनो।

संसार जोर न जुगते छुटाए संसार जिस हाथ जोर कर वे कैसोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुते तिथि वार पौन पानी अग्नि पाताल तिसवे धरती था।

केते ब्रह्म काट दड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध

इतनी हाजरी प्रवान करने भुल चुक दी खिमा। सो आओ हुण आप जी सत्कार जो ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले कथा गुरमत विचारा द्वारा निहाल करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਬੋਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਵਿਕਰਮ ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਚੌਂਕੜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਧਰਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੜੀ ਮਾਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੜੀ ਮਾਰੋ, ਮਾਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਟ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੈਣੇ ਸੀ ਪਿਆਜ਼। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਂਦਾ। ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਸੰਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿੱਕੋ ਮੈਂਡਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਮੈਂਡਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਸੇਵਨ ਸਿੱਧ ਪੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਧ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਖ ਭੂਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁੱਧ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ। ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਕਿਆ ਭਵੇ ਦਸੰਤਰ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ। ਕਾਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਖਫਣੀ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਆ ਭਵੇ ਦਸੰਤਰ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭੌਂ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ, ਦਸੰਤਰ ਦਸ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀ ਨਹੀਂ ਤਤ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜੋਂ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸਲੀਅਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਡਿਤ ਪਾਧੇ ਜੋ ਸੀ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੇ, ਅਤੇ ਜੋਤਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਤ ਸੀ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਸੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਪਸੀ ਬਨ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰੇ, ਕਈ ਤਪਸਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੰਡ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਝੱਲਣੀ, ਗਰਮੀ ਝੱਲਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਪਸੀ ਬਨ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ। ਨਿਤ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਚੀਨੇ ਤਾਮਸੀ,
ऐसे जिहड़े तामसी लोग ने अपने आप नूं जाणदे नहीं कि साढ़े अंदर वाहिगुरु है, मन तों जोत सरूप है, कि असी मां असी परमात्मा दा रूप हाँ। काहे भए उदासा, ते उदासी क्यों हो गए, घर बार छड बैठे, जंगलां नूं चले गए, परमात्मा दा सिमरन नहीं, वाहिगुरू की बंदगी नहीं, एक उत्ते भरोसा नहीं, वहम भरमां च पए हुए ने। गुरु अर्जन देव जी दे कोल एक विद्वान पंडित आ गया, मारे मेरी कथा सुनदा कोई नहीं, विद्या बड़ी पढ़िया ते महाराज गुजारा नहीं हुंदा, कृपा करो। ते गुरु जी कहिंदे कथा करो, गुरमत अनुसार करनी है। एक दिन दा जगत भाई शालू जी आ गए, ते गुरु जी कहण लगे, आओ भाई शालू जी, साढ़े अनिन सिख, अनिन दा अर्थ जिहड़ा गुरु तो बिना किसी नूं मन्ने ही ना। पंडित मन च विचार करता है कि मैं कदों का कथा करदा गुरु चरणा च, मैनू कदे इन्न किया ही नहीं, ये सिख नूं मारे ने इन्न किया है। गुरु अर्जन देव जी उहदे अंदर दी जाण के कह लगे, पंडित जी संगला दीप तो लियाउणी है प्राण संगली ग्रंथ, संगला दीप आ श्रीलंका जाओ। पंडित नूं कहा, तो पंडित कहिंदा, महाराज मैं थित्तां वारां का विचार करांगा, चंगे माड़े का विचार करांगा, फिर जावांगा, कई दिन ला दिते। गुरु जी कहिंदे, तेरी अजे थित्तां दा तेरा ये हिसाब नहीं लगा? कहिंदा नहीं महाराज, अजे दिन मुहूर्त नक्षत्र वेखणे ने। फिर उन्हें एक दिन अपना मुकर्र कर लिया, फलाने फलाने दिन जावांगा, उस दिन चंगा मुहूर्त है। फिर नहीं गया, गुरु जी कहिंदे अज नहीं गया। कहिंदा महाराज मैं तुर लगा, किसी ने छिक मारती, मैं तह तुर रह गया, अज मैं जाण लगा महाराज गधा हीन पिया, मैं तह नहीं गया। सच्चे पातशाह जी ने भाई पैड़ा जी नूं सद्या, कहण लगे जस संगला दीप सत भजन महाराज। वह तुर गया, तो सतसंग कुछ दिनों बाद जाके संग प्राण संगली लै आया। गुरु जी कहिंदे, पंडित जी तुसीं 2 महीने विचारा करदे लगा दित्ती, इहनूं कहिंदे ने अनिन सेवक, गुरु का बचन मन्निया सत बचन है। तो बेनती करदे आपां गुरु दे सिख बैठे हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा वचन है, थित्ती वार सेवे मुगद गवार, गुरु ग्रंथ साहिब दा वचन है। जिहड़ा सिख हो के थित्तां वारां दी विचार करदा, आ दिन चंगा आ माड़ा, आ थित चंगी आ माड़ी, जोशियां दे कोल जा जा के अपने बच्चियां दे विआह शादियां दे जा के थित्तां वार मुहूर्त पुछदा, महामूर्ख बंदा। एक होर बेनती, सगन अपसगन तिस को लगे जसीत नावै, सगन अपसगन हुंदे ने पर उहनूं लगदे ने जिहनूं रब नहीं याद आउंदा। सिखां वास्ते चीज़ां है नहीं, कोई छिक मारदे, कोई आवाज़ मारदे पिछे, कोई फर्क नहीं सानूं पैंदा। क्यों? क्योंकि असीं जदों घरों तुरदे हाँ तो गुरु अगे अरदास करके तुरदे हाँ, मूँह तो वाहिगुरू कह के घरों तुर पो, हे सच्चे पातशाह मेहर करनी, कोई विघन नहीं लगता सत्संगी। तो जिन्हों रब याद ही नहीं, हसदे मस्ती करते करते घरों तुर पे, राज भी इदा ही आए सत्संगी नहीं, रब वाहिगुरू परमेश्वर याद रखना। तो गुरु जी मेहर करते ने, अपने आप में जानते नहीं, स उदासी बन गए। एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावै, एक जिहड़े जती ने अपना जिहड़ा बिंद है इहनू जतन करके रखते ने, ठंडियां चीज़ां खा खा के पी पी के जतन करते ने, अपने आप में जती खवाउंदे ने। बिन गुर शब्द न छूट ही भ्रम आवै जाहे, गुरु दे शब्द तो बिना कदे छुटकारा नहीं हुंदा। 84 लाख के गेड़े च बंदा निकल नहीं सकता, भ्रम आवह जावे भटकना च पै रेंदे ने, वहमां च पै रेंदे ने, जमदे हन मरदे ने, वार वार आना जाना बढ़िया रहिंदा सत्संगी। एक गिर ही सेवक साधका, कई गिर ही दा अर्थ गृहस्थी बन गए, और सेवक साधका सेवक बन गए, गुरु की सेवा करते हैं, साधका बन गए साधना करते हैं, सिमरन भजन बंदगी गुरु के उपदेश उत्ते चलना, घर बारी हुए वरत्या, घर बारी सिख पैरी पाया। गुरु नानक देव के दर का सिधांत है कि गृहस्थी हो के, गृहस्थ विच रह के, कमल के फुल वांग निरलेप रह के अपना जीवन बतीत करना है। विचे गृह सदा रहे उदासी, जो कमल रहे विच पाणी हे। कमल का फुल चिक्कड़ चुगदा, पानी चुगदा, तो पानी तो निरलेप रहिंदा सत्संगी। इस तरह गुरु दे सिख ने गृहस्थ परिवार विच रहना है, काम कार भी करने ने, तो निरलेप रहना। निरलेप रहना की है? तड़के अमृत वाला संभालना है, सवेरे उठना, अपना नितनेम सिमरन करना, गुरु के दर्शन करने, कोई समा संगत,
कोई समा सेवा करके फिर अपना कार विहार करो, शाम नूं फिर गुरु चरणा नाल जुड़ो, कोई समा बाणी सिमरन दे नाल जुड़ो। इनू कहिंदे गृहस्थ च रहिंदे आ निरलेप रहना। जिवें बेड़ी है, बेड़ी पानी च चलती है सत्संगियो, तो ज़्यादा पानी च हुंदी है तो फुट दो फुट उत्ते हुंदी पार हो जाती है। इदां ही गृहस्थ विच रहिंदे आ घंटा दो घंटे टाइम कढ के कोई सिमरन कोई सेवा करके बाकी दा जिहड़ा है समा अपना कार विहार च लाओ ते भव सागर तो तर जांगे। सच्चे पातशाह कहिंदे एक गृही सेवक साधका गुरमती लागे। एक ऐसे ने वाहिगुरू दे प्यारे जिहड़े गृहस्थी हो के सेवक बन गए, साधना करदे ने, गुरमती लागे, गुरु की मत नाल जुड़ गए, गुरु वाले बन गए, गुरु की सिक्ख्या ते चलदे ने। नाम दान इसनान दृढ़, वो नाम दान करते ने, भाव के नाम जपते हैं, दान करते है, इशनान करते हैं, गुरमुख नाम दान इसनान। एक तो गुरु के सिख ने अमृत वाले उठ के तो इशनान करना जरूरी, दूसरा सत्संगी वाहिगुरु का सिमरन करना है, तीसरा अपनी धर्म की किरत बिरत कढ के कुछ ना दा कुछ दान पुन आदि गुजूर करना। इसलिए नाम दान इसनान दृढ़ कर लिया, मन च पक्का वसा लिया, मैं हर रोज़ इशनान करना, मैं हर रोज़ नाम जपना, मैं हर रोज़ जिहड़ा है दान करना। तो बेनती करदे दाना सिर दान है नाम दा दान, सारे दाना नालों श्रोमणी है वाहिगुरू दे सिमरन दा दान। गुरु नानक देव दे बचन हन श्री राग दे विच कि अरब खरब दीनो दान जा मन बस्यो हर को नाम। भाई जी हिरदे विच वाहिगुरू दा नाम बस जे ना हिरदे विच, समझो उस गुरसिख ने अरबां खरबां रुपये दान कर दिते। अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम। इसलिए वाहिगुरू दा सिमरन करना, हर भगत सो जागे, वो वाहिगुरू दे प्यारे वाहिगुरू की भगती च जाग पए, सचेत हो गए, वो वाहिगुरू की बंदगी करते ने। भगती की हुंदी है, हर भगत हर का प्यार है। आपां भी भगती कर रहे हैं, दो तरह की भगती कर रहे हैं आपां, एक हुंदी श्रवण भगती, एक हुंदी कीर्तन भगती। नौ तरह की भगती है, उस चो एक श्रवण भगती, वह की है सुनना, गुरु की बाणी सुननी, कीर्तन सुनना, कथा सुननी, वाहिगुरू की सिफत सुननी, वह आपां कर रहे हैं। एक हुंदा कीर्तन भगती, कीर्ति करनी, साजां नाल जस गाउणा, बाणी पढ़नी, कथा विचार करनी, यह सारा कुछ कीर्ति है। ये दो तरह की भगती आप हुण कर रहे हैं। तो गुरु जी कहिंदे हर भगत सो जागे, वाहिगुरू की भगती च जाग पै, गुर के गुर ते दर घर जानी है। भाई गुरु की कृपा नाल परमेश्वर का दर परमेश्वर का घर यह जाणिया जाता है, यदि समझ आउंदी है। सो जाए सुजाण है, गुरु का सिख जा के गुरु के दर ते परमात्मा के दर नू घर नू पछाण लैंदा है। नानक नाम ना विसरै समावती ते तंत्र, गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह कृपा करदे ने। नानक नाम ना विसरै कि मैनू दास नानक नू कदे भी परमात्मा दा नाम भुले ना। रोज़ ही आपां जपजी साहिब पढ़दे पढ़ना चाहीदा। कुछ दो पंक्तियां आउंदियां हन सत्संगियो, गुरा एक देहे बुझाई, सभना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ये पंजवीं पौड़ी दे खीर ते छेवीं च फिर यही पंक्ति, गुरा एक देहे बुझाई, सभना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। दो क्यों दित्तियां, एक भी लिख सकते सी। आपां घरों बच्चे नूं काम ते तोरिया ते बच्चे दा ध्यान नहीं हुंदा, बच्चा शरारती हुंदा है, उहदा सुभाअ चंचल हुंदा है, आपां फिर आवाज़ मारदे पुत आ काम है भुल ना जाई तू। इदां गुरु जी ने साडे ते मेहर कीती है, गुरसिखा भुल ना जाई। अरदास करिया कर, गुरा एक देहे बुझाई, सभना जीआं का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। फिर क्या मारने दोबारा कि गुरु दे सिख भुल ना जाई। इसलिए सत्संगी गुरु महाराज बख्शिश करते ने, नानक नाम ना विसरै। ये वाहिगुरु मैनू तुहाडा नाम कदे ना विसरे, साचे मन मानै सच्चे नाम दे विच मेरा मन मन जावे। मन मानिया तो हर जाने, गुरु कृपा करन, नाम दान बख्शन, गुरसिखी जीवन बख्शन, सरबत संगतां दीआं हाजरियां, तिल फुल भेटावां, सेवावां, रस्तां बस्तां महाराज अपने दर प्रवान करन, गुरसिखी जीवन बख्शन। सो शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का।
ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਗਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ।

करे सकल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी।

जन की वढाई, हर कै नाम जन सोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जापत कछ नाए बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग केते तरे। पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गा।

संत रिद वस संत प्रताप दुर्त सब नस संत का संग वडभागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ्यवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु सातर बहु सिमरती पीखे सरब टटोला पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमरत वकियान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना

करै बोपाती नहीं तल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तपीसर थीवे अगन माहे हुमत प्राण कनक असव हैवर भूम दान न्यौली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर काछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै

तिन घट घट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभु तेरो मान सगल।

आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एनिया सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कमन मूल ते कमन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन में जिने उभारिया बार बेवता तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद प्याऊ ऊपर साक सैन मुख प्याऊ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जय प्रसाद धारू पर सुख बसै सोत परात मीत बनता संग हसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हाथ पाव कारण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आदि अंत जो राखन हार तैसो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तासो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे बिसार मुगद अजान सदा सदा इह भूल नहार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दब प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पतत बिकराल नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भीख अंतर मल माया छपछ नाहे कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सवान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर

सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गै लेहो ओढ़ निभावै, कहा बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे पोरा, कहा बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहां उस गवन, करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाई सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलवा के ग्रह भीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मन मने प्रतीत, काल न आवै मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महालोभ त्रोह, याहू जगत बिहाने कई।

दास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अंतर जामी अपनी गात मित जान हो आपे आपन संग आ प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नान कबर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म।

बाहर पेखंतर मल माया सब सिनाहे कस करे छुपाय। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बार तन स्वाह गल पाथर कैसे दरे अथा जा के अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह सुमात। सुन अंदा कैसे मार्ग पावे कर गए ले हो उड़ निभावे कहाँ बुझारत बूझे डोरा निस कहिए तो समझे पूरा कहाँ बिसन पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल परबत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत। बलुआ के गृह भीतर बसे अंध केल माया रंग रसै

सूह कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी तुम ते हो सुआज्ञाकारी।

वै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर ध्रुव कव हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कवताव, मिथ्या मान पर लोभ लुभाव, मिथ्या तान नहीं पर विकार, मिथ्या बासलेन विकार बिन।

अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जेह प्रसाद शती है अमृत खाहे तिस ठाकर कौ राख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधर तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जेह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर देह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरह तिस रसना

साधक संग विजय प्रभ नेरा साध संग सब उतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक मेहमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माए सुमानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुलाए।

भरपूर साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बने आई नानक, साध प्रभ भेद न पाई श्लोक।

ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृढ़ ते अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आम परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय दाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने

फिर वृख निव जाए, कई कोड पवन पानी बसंतर, कई कोड देश भू मंडल, कई कोड शशियर सूर्य नक्षत्र, कई कोड देव दान इंद्र सिर शत्र।

सोई करावे। इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिख्या महरा चे जे जानत अपने आप बचे। परमे भूला दह दिस धावे निमुख माहे चार कुंड फिरे आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले। खिण मै नीर कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जाग का दृष्ट कछु ना आवे। तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे।

करे मानुख ऊपर करे आस पर भीतर ता काहु बिनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होए जाए बसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी।

मेद सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा कहो करहे पलि करनी सा सोभा परिहर की सरणी अनकी।

गुरु मंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नान प्रकाश रोग सरगुण निर्गुण कार सुन समाधि आप अपन किया नान का पे ही फिर जा पस्तवरी जब अकार हो कह न दृष्टे तब पाप पुण तब कहते होता जब धारी अपन सुन स्वभाव तब विरोध के संग मात

के सोवत परम आपन खेल आवर्ती जानान करने हा न दूजा जाब होवत प्राव केवल तनी ताव बांध मुक्त कहो किस कहो गणी जब एक है हर गमे अपार तब नरक सुर कह कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाह तब

सच सोचाए सोच न होवई, जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार।

असंघमूर के अंध घोर असंघ चोर हर हम घोर असंग गल बढ़त्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कूड़ियार कूड़े फिराहे असंग मलेश मल पाखाहे असंग निंदक सिर करहे पार नानक नीच का है विचार वारिया ना जावा एक बार ज्योत भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण खरा सिर संजोग बखाण जिन्हें लिखे जिन ए लिखे तिसर नाहे जिपुर माहे तिप तिपाहे

अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजर्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, मंत है, अलीक है, नरसरीक है, नरलम है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षीय भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्वौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो राध राधे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनंगी अनामय समस्ती सुरूभे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग मनाने कलंकी सुरूभे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृदे नमो शस्त्र भारे नमो अस्त्र मारे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर नमो प्रेत अप्रे देव सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाह नमो पूपे नमो दान धाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे उर्पे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरुद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओघ हर्ता प्रंग प्रंग परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी शांद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है आदेश है अपेश है भुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाधे आनंदी सुरूभे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वभीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे दर्भंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे खिज्जे अभिज्जे समस्तं प्रसज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा ऋद्ध सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं

हैं वह सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्या है के सर्वत्र दान्या है के सर्वत्र गाउणा है के सर्वत्र भावना है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र गल है के सर्वत्र पल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र भेषा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग गलीम है के परमंग फहीम है के आगल अलाम है के साहिब कलाम है के उजल मजू है तमामल रजू है मे सुर सलाम है सलीखुद मदाम है गनीम शिकस्त है गरीब अल पदस्त है बिलंद उल मकान है जमीजुल जमान है तमीजुल तमाम है रजुल निदान है हरीफ उल अजीम है रजाय की यकीन है नेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीम उल खराज है निर्ग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुभय समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्भाव स्वरूप अगाध है अनुभ उमंगाध रूपे नाश रूपे अनंगीय नाम है त्रिभंगी त्रिगाम है त्रिभर्गम त्रिभाधे अगंजे अगाधे सुवंग सर्व भागे सुसर्व अनुरागे त्रिभुग स्वरूप अशिज है अशुद है के नरकंग प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनुप है प्रजुगत अनुप है नृक सुदा है विभुक्त पर प्रवाह है अनुग स्वरूप प्रजुगत अनुप है चाचरी शांत अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अतूत है अदूत है

हैं, जग जन हैं, सर्वंग पर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वास हैं, सर्वनाश हैं, करुणाकर हैं, विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड हैं, कलखंड हैं, परतेपर हैं, करुणाकर हैं, आ जप जपे आ थपा थपे आ कर्ता करते हैं, आमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा करते हैं, आ कर्ता करते हैं, तरणी तृत हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, आ कर्ता करते हैं, आमृता मृत हैं, अजवा करते हैं, अमृता मृत हैं, नरनायक हैं, अजवा करते हैं, अमृता आमृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नरपनायक हैं, सर्पायक हैं, पापंजन हैं, अरगंजन हैं, रपतापन हैं, जब जापन हैं, कलंक करते हैं, सर्वा करते हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म बास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृद्ध वृंदे, नमो बीज विजय, नमो रासंगताम सत्सात रूपे, नमो परम तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्यान, नमो जुते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते, कलंगा रूपे अलंगा रंग अलंके, नमो आशासे, नमो बांग बंके, अभंगी स्वरूपे, अनंगीय रामे, त्रभंगी त्रका त्रभंगी त्रकाले, अनंगीय गामे, एक श्री शांत, अजाय आलाय अपाय अभय अपहु अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अगाल दयाल अलेख अपेख नाम काम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनि नराग नरंग नरूपे नरेख अपरम अगंग अकर्मंग परमंग अगंज लेखे भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नामे समस्तुल निवास इंद्र कामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी गरिमल गरिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गरिमे हरियंग गरियंग गरिमल रिमे चतर चक्र वर्दी चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं

सगरी सृष्टि खाय अजंबव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण गाता जे अस तुझताप शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई कबार ते है ताके काल निकट न आह रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट अरे तत्काला कृपा दुष्टन जाय ने हर हाओ ताके ताप तनक मैं हर हो रे दिसित घरमो सब होई दुष्ट शाह शब सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास देता है उबारा जिन्नर नाम देहारो कहा दार दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख दे लियो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता कृपे सकल देखो हरता दुष्ट दुखिन को शय करता श्री सुजप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ दगाला मन बांचत बल पाव सोई दुखना तसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निगना नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई समत सतरह सहस पण जय अर्थ सहस पण तीन कहे जय भाद्रव सुधी अष्टमी रब वारा तीर सदर ग्रंथ तीर्थ ग्रंथ तीर सदर ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गवांग तेरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो सिमरन शास्त्र वेद समय बहुभेद गहे अमेक ना

धारो वाजे पंच शब्द घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कलाजत करता हरिया पंच दूत वास कीते काल कंठ कुमारिया दुर्गरम पाया तुजन गाओ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तत कर आनंद वाजे साची लवै बिण दे नमाणी लवै बाजो क्या करे बेचारिया

कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्रो वो साचा स्वर्णायन बठाए हर जियो गुफा अंदर राके वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पाऊन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ ने दया वे ताए। सब थाई होए सहाय।

0: करहे वेख्यान
1: आखे बर में आखे इंद्र
0: आखे गोपी जा गोविंद
1: आखे ईश्वर आखे सिद्ध
0: आखे केते गीते बुद्ध
1: आखे दानव आखे देव
0: आखे सरनर मंजन सेव
1: केते आखे आखन पाए
0: केते कह कह उठ उठ जाए
1: केते कीते होर करे
0: ताख न सके के
1: जेवड़ पावे तेवड़ होए
0: नानक

0: अतः है अपे है अजीत है प्रीत है
1: त्रिपर्क है सर्ग है
0: अनिल है अनाद है अजय है अजाद है
1: जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है
0: अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है
1: मीक है रफीक है तंद है बंद है
0: निर्बुज है असूज है अकाल है अजाल है
1: ला है जा है अनंत है महंत है
0: अलीक है नृसिक है।

0: नमो जंत्रजंत्रं
1: इस्ते नमो तंत्रजंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे रूपे समस्तोल्नेवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बिदुखता
1: अदो अर्ध अर्धं अकांग।

0: जलेह थलेह अपीथ अपेह
1: प्रभुह जूह देशह पेशह
0: पुरंग प्रयात चांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमस्तुं निर्नाथे नमस्तुं प्रमाथे नमस्तुं काले नमस्तुं पाले
1: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे।

0: पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं भोक्ता सर्वं जुक्ता
1: सर्वं देवं सर्वं पेवं
0: सर्वं काले सर्वं पाले
1: रूआल छंद तव प्रसाद आदरूपनाद मूर्त जोन पुरख पार
0: सर्वांतर मान देव पेव आदुदार
1: सर्वपालक सर्वकालक।

0: रूपं सर्वपाग्येषु सर्वानुराग
1: त्रिपक्ष स्वरूप है अछेद है अछूत है
0: कि नरकं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है
1: निरुक्त प्रवाह है सदा सदा है
0: विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है
0: अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है
1: चाचरी छांद अपंग है अनंग है अपेक्ष है अलेख है।

0: अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, प्रचंड तव प्रसाद, सर्वंघंता सर्वंगंता, सर्वंघर्ता सर्वंकर्ता, सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं,
1: सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता,
0: प्रसावल छांद तव प्रसाद, नमो नारक नास्य सदावं प्रकाशे,
1: स्वरूपे अपंगं विभूते,
0: परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे,
1: अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते,
0: अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे श्रीभंगी अनुपे, न पोत्र न
1: पुत्र न सत्र न मित्र,
0: न ताते न माते, न जाते न पाते, सदैव प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवंती छंद तव प्रसाद, के जा हर जहूर है, के हाजर हजूर है,
1: सलाम है, समस्त कलाम है,
0: के साहेब दिमाग है, के हसन दुराग है।

0: विभूते
1: कलंकार रूपे अलंकार अलंके
0: नमो आस आसे नमो बांक बंके
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे
0: त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी काम
1: एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अपय
0: पूजू नाश काश
1: अगंज पांज लख पख
0: काल दयाल अलेख पेख
1: अनाम काम अगाह अठह
0: नाथे प्रमाथे अजोनिय मोनी
1: नरागे नरंगे नरूपे नरेखे
0: करमंग परमंग गंजे अलेखे
1: बजंग प्रयात छंद नमस्व प्रणाम समस्त प्रणाम से
0: गंजल गणा में समस्त निवासी
1: निर्कर्मिंग विभूते समस्त स्वरूपे
0: सदर्मंग विभूते
1: सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी
0: समस्त निवासी
1: अजाय

0: ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं त्वया प्रसाद सोई है। श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयो कर जोग जति के।
1: सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा देख संत समूह नेक मति के।
0: सारे ही देश को देख रहे उमत को न देखे तो प्राण पति के।
1: श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के।
0: माते मतंग जरे जर संग अनुप उतंग सुरंग सवारे।
1: होट तुरंग पौन के गौन को जात निवारे।
0: पारी पजान के पूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे।
1: एते पय तो कह पय पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे।
0: जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे।
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हंस ही है राज हजारे।
0: पूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे।
1: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे।
0: तीर्थ नान दया दमदान संयम नेम अनेक बिसेख है।
1: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान पेख है।
0: पौन आहार जतीजत तार्स सब विचार हजार देख है।
1: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक एक न लेख है।
0: शुद्ध सपाह दुरंत दुबाह साज सनाह दुर्जान दलेंगे।
1: पारी गुमान परे मर मैं कर पर पत पंख हले न हलेंगे।
0: तोर हरीर मरोर मोसन माते मतंगन मान मलेंगे।
1: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
0: पीर पार बडे बरियार अबिचार है सार की तार बिछैया।
1: तोरत देश मलिंद वासन माते मान मलैया।
0: गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया।
1: साहेब श्री सब को से नायक जाचक नेक सो एक दवैया।
0: दानव देव पनिंदन साचर पूत पवेक पवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे।
0: उन प्रतापन बाढ़ जात तन पापन के बह पुंज खपेंगे।
1: सा समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक जपेंगे।
0: मानव इंद्र गजेंद्र निरादप जोन तर लोक को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साध बनेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर बसंत सचिपत अंत फसेजम फास

0: पास की ओबे के आम सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो
1: साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम की हो ते नहीं प्रभ पायो
0: काहू ले पान पूज तरे हो सर काहू ले लिंग करे लटकायो
1: काहू लखियो हर वाची दिशा मैं काहू पिशाको

0: की करह कहानी
1: अखत की
0: करह कहानी अकथ गिरी कित द्वारे पाई है तन मन धन सब स्वाप गुर को हुक्म मन पाई है
1: हुक्म मन गुरु केरा गावो सच्ची बाणी
0: कह नानक सुनो संतो कथ हो अकथ कहानी।

0: तेव चल है जिना मार्ग पाव है।
1: जब तू चलाए तेव चल है जिना मार्ग कर कृपा जिस कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आए।
0: जिसनो कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पाव है।
2: कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तवे चलावे।
0: हो सोहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सत गुरु सुनाया।

0: नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुरते वे मुख होवे सतगुरु मुक्त न पावे
0: पावे मुक्त न होठै कोई पिछो विवेकिया जाए
1: अनेक जुनी परम आवे विन सतगुरु मुक्त न पाए
0: फिर मुक्त पाए लाग जरनी।

0: ना जत जड़ा
1: सिंह सख्त आप उपाय कह करता आपे हुकम वरताए
0: हुकम वरताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए
1: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मानव साए
0: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक स्यो लगलाए
1: कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए
0: सिमरत

0: प्यास न तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए
1: प्यास न जाए होर तकिते जिचर हरस पल्ले न पाए
0: हरस पाए पल्ले पिए हरस बोर न तसना लागे आए
1: एहो हरस करनी पाए सतगुर मिले जसाए
0: कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए
1: ए शरीरा मेरा हर तुम मैं ज्योत रखी तातु जग में आया
0: ज्योत रखी तुद विच तातु

पामे सुने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते पूरा भगवंत सागल समागी तुमरे सूतर आरी तुम ते होवे सो आजे आकार तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये कर नौ निद आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगी तर पिता पंथ देवाली अमृत दे दाते समशेर बहादुर जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां जी दे आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहेब जियो महाराज जागदी जोत जाह राजहूर हाज राह हजूर सर्ब कला भरपूर सब थाई होए सहाय चार साहेब जादे साहेब जीत सिंह जी साहेब जुझार सिंह जी साहेब जोरावर सिंह जी साहेब फतेह सिंह जी पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सुरबात्र शहीदो मुरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय जिन्ह ने नाम जपया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही धर्म हेत शीस दिते तेना गुरु दे प्रेमिया दा ध्यान तरके खालसा जी साहेब बोलो जी श्लोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका खिले कीचे अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी सरबत समूह खालसा जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रचा रियायत बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी दा मन नीवा मत उची मत पादा राखा आप काल पुरख वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चितावे चितावन का सदका सर्ब सुख होए खालसे जी की देख देख फतेह चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार होवे खालसा जी साहेब बोलो जी जी गुरु गरीब नवाज सिखा नू सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान खालसे जी को श्री हरिमंदर साहेब अमृतसर सरोवर जी के इशनान श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज जी दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी श्री अकाल तख्त जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारण जी तपयाने जी खडूर जी गुरु की बौली जी श्री गोविंदवाल जी दे इशनान दर्शन दीदार मेले बोलो जी थम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक डेहरे जी तख्त केसगढ़ साहब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहब जी श्री दमदमा साहब जी दमतान जी मुक्तसर जी पौंटे जी तख्त श्री पटना साहब हरिमंदर जी दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो झंडिया साहेबान जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी बिभौर साहब जी पंजे साहब जी कपाल मोचन जी रण मोचन जी नानक मत्ते जी तलगन जी जी नानक जीरा जी शिकार काट जी हीरा काट जी माता साहेब देवा जी संगत साहेब जी माल टेकड़ी साहेब जी बसमत नगर दमदमा साहेब जी बंदा काट जी नगीना काट जी गंगा गोदावरी जी दे इशनान दर्शन दीदार मेले बोलो जी गुरु गरीब नवार सरबत समूह खालसे जी को नगारिया निशान साहिबा सांजुगा तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी जी गुरु गरीब नवार आप जी दे पावन पवित्र हजूरी विच पंज बाणिया दे नितनेम दी अरदास है जी बाणी पढ़दे अनेक प्रकार दियां गलतियां हो गए ने आप जी जान बच्चे समझ के मुआफ करो पिछले अवगण बख्श लै प्रभागे मार्ग पावे अग्यों बाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न दी बल्ब दी आप जी ने ही बख्शनी दूरों नेड़ियों आईया संगतां दी हाजरियां दर प्रवान करनिया
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਏ ਬੰਦ ਹੋਵਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਟੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ

0: सिफ़तु ख़संग दी नूर अरसो कुरसो चटिये तुद दिखे सचे पातशाह वल जनम जनम दी कटिये सज्जन सच्चा पातशाह
1: तेरे साहत साहो जिस पास बैठे आसोई है सबना

0: माने छपाए, माने छपाए प्रभु त्याय मिटे जाम की त्रासा। गोविंद गाया साध सिंह हारिया प्रभ पूरी न्यासा। ताजमान मोह विकार सगल है प्राप कह मन पाइया। ब्रह्मंत नानक दिन सरहणी सदा हर हर त्याई। दार बचै अनहद बाजे राम घट घट हार। गोविंद गाजय राम गोविंद गाजय सदा। विराजय आगम गोचरूचा गुण बेअंत कथन न जाई। कोई सके न पहुंचा आप पाए आप पाले। जी जंत सब साजे ब्रह्मंत नानक सुख नाम भगती। दार बचै अनहद बाजे
1: अपने गुर को तन मन दीजे ता मन भीजे तृष्णा दुख नवारे। मैं फिर सच पसाणिया और भूली अवगणियारे। सचड़े आप जगतों पाया

शीतला ठाकुर हाई बिगन गए हर नाई। मेरा प्रभु आ सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की।

मारी, हर के चरण सदा सुखदाई। जो इच्छे सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई रहा।

संतों राम जबत सुख पाया। संत स्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहो गुरपूरे की बाणी पर ब्रह्मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल्या कथ कहानी।

पंजवा। हर मंत्र वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, गुरपुरे की वडियाई, ता की कीमत कही न जाई, हौ कुरबान जाई तेरे नावै, जिसनु बख्श लए मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहा।

नाही। साचे साहिब सिउ मन माने आर सर्ब निरंतर जाने आ रहा। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला। चर्च तेरी वडियाई नित नानक नाम ते आई। सुरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे। कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है। गुरपुरै पूरी कीती

जन भजन करे प्रभ तेरा तुसे अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे भव मिटियार गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा। जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जां की पूर्ण प्रभ के कामा। गुर चरणी लाग तरयो पव सागर जप नानक हर नामा। सुरठ महला पंजवां

दयाल कृपाल कृपा निध पूर्ण खसम हमारे राम। आओ बैठे आदर सब थाई ऊन कतहूं बाता भगत सिर पाव दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सुरठ महला नावा।

जाने निमुख माहिन सुतारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरै पारा। सुरठ महला नावा

गुण रवे प्यारे, अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे, बबजल पार परे जिस भावे तिस मेल लै प्यारे, सही सदा खरे सुमरथ पुरख दयाल दियो प्यारे, भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पै प्यारे, जे अंत जामी जान हलत पलत सवार या प्यारे, मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरे प्यारे, नानक सतगुरु बाण सुरठ महला पंजवां घर दूजा।

जैसी मत दे प्रभु स्वामी हम तैसे बुलक बुलागी क्या हम किरव नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत में तुमरी गात में तो कह ना सके प्रभु हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रभु स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथा की तनाश्री महल्ला चौथा हर का संत सदगुरु सब पुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम ते सुख साध कुरबानी हर के संत सुनो जन कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पल सब किलबख पाप ले जानी रहा वैसा संत पर साधु जन पाया ते बड़ पुरख वडानी तिनके तूर मांगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लोचानी हर हर सफल्यो बिरख प्रभु स्वामी जन जप्यो से त्रिपतानी हर हर अमर पीत्र तासे सब लाथे भूख भुखानी जिनके वड्डे पाग वड्यो चेतन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी महला चौथा हम अंदर अंद बिखे बिखराते क्यों चले गुरु चाले सतगुरु दया करे सुखदाता हम लाभ अपन पाली गुर सिख मीत चलो गुरु चाली जो गुरु कह सोई परमानु हर हर कथा निराली राव हर के संत सुनो जन भाई गुर सेव बेग बगाली सतगुर खे सेव खतर बांधो मुर जानो आदि कह काली हर कै संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल केलाली हर हर जपन जप लोच लोचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साजना पगराली इतना श्री महल्ला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिलाती हर हर कृपा करो प्रभु अपने मुख देव हर निम खाती

पापन गति हर के संत जना हर जप्यो गुरु रंग चलो लहराते हर हर भगत बनी अत शोभा हर जप्यो उत्तम पाते आपे ठाकुर आपे सेवक आपे बनावे पाते नानक जन तुमरी सुनाई हर राखो लाज भगाती तनाश्री महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई केव छोट हम छोट काकी हर हर जप बेड़ी हर तुला हर जप्यो तरह तरह के हर जी लाज रखो हर जन के हर हर जपन जपाव अपना हम मांगे भगत काकी राव हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बच ना के लेखा चित्र गुरु जो लिखिया सब छोटे जम की बाकी तनास हर के संत जपो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर त्रिशन अग्न बुझाने शिव चर्यो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप पाकी जन नानक प्रभु कृपा की जय हर दासन जन नानक प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की इतना श्री महला चौथा घर पंजवा दुप देख ओंकार सतगुरु प्रसाद उर धार विचार मुरार रमो रमन मोहन नाम जपीने आदृष्ट अगोचर अपरम्पर स्वामी गुर पूरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम कास लोच हम संग हरि सत संग पाए हर कंचन चंदन कीने रहो नाव छे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रवेव नाम पतिने जन नानक हर हृदय सच सद त्यावो एओ हर प्रभु मेरा भिन्ने तना श्री महला चौथा गुण कह हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावै फिर जन्म न आवै हर हर हर ज्योत समाई जाप मन नाम हरि हो सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव चढ़ाई रव

आतरच्यो कर लिनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोविंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला को नान गुरु ए बधायो प्रीत प्रभु सद केला तुना श्री महला पंजमा कर कृपा दियो मोय नामा बंधन ते छुटकाए।

जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन सियो आए महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए।

गोदे पाए दल संसारा भगत न व्यापै माया संत प्रसाद महासुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया।

अथलाशेद अपार प्रभु उच्चा जाकार रूपम जाप जाप करे आनंद जनम अचरज अनूपम सामत देह दयाल प्रभु जत कुमे अराधम नानक मंगे दान प्रभु रेन पग सादा तनासी महला पंजवा जनतों पे जय तुलाहे सुख सहज के तीन कर आओ आनंद मगल गुण

मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सतसंग अमाहा राम हर गुण बाणी सरवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोलह बाणी हर गुण जप अमाहा राम सब तीर्थ वर्त जग पुन तुलाहा हर हर नाम न पुजे पुजाहा हर हर अतुल तोल अतपारी गुरमत जप अमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देह नानक नाम अमाहा राम जित सरी मोहला पांजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कौनी हा जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सत बंदप इष्ट मीत अर भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदह ता मैं संतोख न पाया हस्त रथ असव पवन तेज धनी भूमन चतरांगा संग न चलियो इन में कछवे ऊठ सधायो नांगा हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए नानकी हां सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाइए जित सरी मोहला पांजवा घर तीजा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रिय कहियो बिसम भई मैं बहु बिद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो बर न दिसे चहन ना लखिए सुहागन सात बजहियो सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानकैत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जैत श्री मोहल्ला पांजवा धीरो सन धीरो प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेसमार बेअंत बड़ दाता मने घीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबू झूरो बोज प्रभ को जैत श्री मोहल्ला पांजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावो नीके घट घट तिसे बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोड़ सूर उजारा बिनसे भरम अंधेरा थान थनांतर सब ने जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बोर न होई है फेरा जैत सरी मोहला पांजवा घर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग है तजी सियानप चिंत वसारी अंग छोड़ है त्याग रहाओ जो देखो तो सकल मोहे मोहियो तो सरन पर्यो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पाव को ज संत भेटे वड भाग जन नानक सर्ब सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी मोहला पांजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ियो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जीओ मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण सरण करुणापत गहो चरण आसरा नाव रूप हो साध संग भवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जराव जैत श्री मोहला पांजवा जाको पै गोविंद सहाई सूख सहज आनंद सगल स्यो वाको ब्याद ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुपाई त
तिन कै संग नानक निस तरिया जिन रस रस हर गुण गाई जित सरी महला पांजवा। गोबिंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन मन चिरावो धूप। हार परयो तुमरे प्रभ द्वारा दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड लिहो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री मोहल्ला पांजवा। कोई जन हर सियो देवे जोर चरण गहो बको सब रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ। मन तर निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुदा संजोर या रस में मगन होत कर पाते महाबिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर। अबे पद दान सिमन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। जैत सरी मोहल्ला पांजवा। चात्रक चेतवत बरसत मेह कृपा सेंद करना प्रभ तारो। हर प्रेम भगत को नेह रहाओ। अनक सुख चकवी नहीं चाहत आनंद पूर्ण पेख देह। आन अपाव न जीवित मीना बिन जल मरना तेह। हम अनाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करें। चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन न केह। जैद श्री मोहल्ला पांजवा। मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग भेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ। प्रेम ठगौरी जिन को पाई तिन रस पियो पहारी। ताकि कीमत कहन न जाई कुदरत कवन हमारी। लाए लै लड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे। प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक सारण द्वारे। जय श्री मोहल्ला पांजवा। आए अनक जन्म परम सरणी उदर दे अंध कूपते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना नाहन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरणी। सुख संपत माया रस मीठे एनी मन में तरणी। हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी। जय श्री मोहल्ला पांजवा। हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूर्ण दास के काम रहाओ। कोट बिगन बिन से हर सेवा निचल गोबिंद धाम। भगवंत भगत को पो किश नाही आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करणी सोई सोई बिन सतखाम। चरण कमल हिरदे गोह नानक सुख समूह बिसराम। जैत सरी मोहल्ला नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उर जायो। जो जो कर्म कियो लालच लाग तह तह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखे रस रचियो जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन को तहायो। रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो। जन नानक भगवंत भजन बैना व्यर्था जन्म गवायो। जैत श्री मोहल्ला नौवा। हर जू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास भयो और अंतर। सरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फोन करत पाप अब हारा। पै मरबे को बिसरत नाहन तै चिंता तन जारा। किए अपाव मुकत के कारण दे दिस को उठ ताया। घट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म ना पाया। नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय। नानक हार परियो सरनागत अभय दान प्रभ दीजै। जैत श्री मोहल्ला नौवा। मन रे साचा गहो बिचारा राम ना बिन मिथ्या मानो। सगरो एहो संसारा रहाओ। जाको जोगी खोजत हारे
पायो नाहे तह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत मैं हर को कबू नाहे संभारा नानक सरन परियो जग बंदन राखो बिरद तुहारा जैत सरी महला पांजवा शांत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चित वो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत शांत सुन जार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे ओ फिरो खुजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दी जय नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तरी जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जिवे तसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बजंतिया यार वे प्रे हबे सखिया मूह कही ना जेहिया यार वे हिक दू हिक चाड़ै हो किस चितेहिया हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुण तासा जिन मैडा लाल रिझाया हो तिस आगे मन डेहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागण मूह दस दिखा पिर केहिया यार वे पिर आपन पाणा किस नीशी संदा यार वे तेरा बिया लालन मूह दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जय तन पाग मथाने बह पकड़ ठाकर हो किदी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिसे हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सकेंदी सा मैं पाई वर लुड़ींदा आया वजी वधाई महामंगल रहस थिया पिर दयाल साध नव रंगिया वडभाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जैत सरी महला पांजवा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक ऊचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ शांत जो जन त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रात सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी कूलिए लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नानक दया तहरो काड भव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गौण ऊचा प्रभ का नाओ नानकी बिनंतिया मिले न थावे थाओ शांत दूसर नाही ठाओ का पै जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लेव लाइए अल्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाइए सलोक रे मन ताको त्याइए सब बिद जाके हाथ राम नाम धन सांचिए नानक निब है साथ शांत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल महल पूर रहया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोबिंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पज सरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਸ਼ੰਤ। ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਬਿਖ, ਬੁਝੀ ਤਪਤ ਅਗਾਨਿਆ ਗੈ ਭੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਲੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਢੇ, ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁੱਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਧਰਮ ਦੂਤੋ ਡਿਠਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਭਰਮੇ ਜੋਨ ਅਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੇ ਆਵਹੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸਹਿਲ ਤਰਵਰ, ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰੰਤ ਜੂਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੇ ਪਰਮਾਏ, ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ ਬਤੀਤ, ਜਰ ਮਲ ਬੈਠਿਆ, ਕਰ ਕੰਪੇ ਸਿਰ ਡੋਲ, ਨੈਣ ਨਾ ਡਿਠਿਆ। ਨੈ ਨੈਣ ਦੀਸੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਈਸੈ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਚਾਲਿਆ। ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸਿਰ ਖਾਕ ਛਾਨੈ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਜਾਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ, ਨੈ ਨਿਮਖ ਮਨ ਮੈਂ ਬੂਠਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਕਾਗਰ, ਬਿਨ ਸਬਾਰ ਨਾ ਝੂਠਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਦੁੱਤਰ ਪੈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਤਰਾਇਆ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਭਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰ, ਕਰ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਾਰਿਆ। ਹਰ ਮਾਨ ਲੀਏ ਨਾਮ ਦੀਏ, ਅਵਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਠਾਕਰ, ਮਨ ਲੜੀਂਦਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸਰੈ। ਪੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸੁਨਾਵਨੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜੀਏ ਸਾਚ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪਦਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ, ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ ਸਲੋਕ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ, ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨ। ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ, ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਪੌੜੀ ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਲ ਮਝਾਰ, ਉਰਦਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੈ, ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਧਾਰ, ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਨ ਰੱਖਿਆ, ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਜਾਸੇ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਰਬਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ, ਖੰਡਨ ਕਲ ਕਲੇਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨੈ ਦੂਰਨ। ਹਬ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜਿਸ ਸੰਗ, ਤੈ ਸੋ ਲਾਈਏ ਨੇਹ, ਸੋ ਸੋ ਬਿੰਦ ਨ ਵਿਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹ। ਪੌੜੀ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਧਨ ਦੀਆ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ,
ग्रह मंदिर राथे आस दिए रच भले संजोग सुरतबंत सुतबंता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाए वजोग साध संग हर गुण रवो बिन से सब रोग सलोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उद्यम हर भगत भावहीन नानक प्रभ बिसरते प्रेत तह टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बयान से हो नानक सच्ची रीत साई से तीरते आ पौड़ी जिस बिसरत तन भसम होए कहते सब परेत खिन ग्रह में बसन ना देवही जिन सिव सोई हेत कर अनर्थ दर्भ सांचया सो कारज केत जैसा बीजे सोलण कर्म एहो खेत किरतण करा अकिरतकणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक।

कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

रब जी को नाम मने साधारे, जी प्राण सुख इस मन को वर्तने हमारे राहो। नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरे मेरे परिवार है। नाम सखाई सदा मेरे संघर, नाम को निस्तारे। बिखे मिलास के यत्मो तेरे, चलतन कजु संगार। इष्ट मीत नाम नानक को, हर नाम मेरे भंडार। टोडी महला पंजवा।

चरण पखार करो गुर सेवा मने चरावो भोग छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिख

पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी राहो।

जो मांगे सोई सोई पावे शिव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहु ते छूटे पवजल जगत कर जगत त्रायण। खोजद खोजद तत् विचार्यो दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जय नानक सदा सिमर नारायण। टोडी माला पंजवां निंद गुर कृपा ते हट्यो पार ब्रह्म प्रभे दयाला शिव कै बाण सिर काट्यो। राहो काल जाल जम जोय न साके सच का पंथा थाट्यो। खाट खात खर्चत किसिन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो। पसमा भूत हो आखिन पीतरे अपना किया पाया। आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोक सबाया। टोडी महला पंजवा

अनक छुद्र बोयत के छुटकत थाम न जाई करे, जिसका बोयत तिस अरादे खोटे संखरे, गली सैल उठावत चाहे ओ उहा ही है तरे, जोर सख्त नानक किश नाही प्रव रखो शरण परे, टोडी महला पंजवा

संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रवेक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप धारण ग्रह पार ब्रह्म स्वामी बसदी कीनी आप राओ जिसके से फिर

पंजवा माए मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिन से सब दुख राओ।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कटंतर के पाप सब खोवे, हर पाव जल पार उतारा राव। काया नगर बस हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा। हर निकट बस्त किस नदर नावे, हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहो सराफ रतन हीरा, हर आप किया पा सारा।

सुहुब सुबई अपने प्रीतम के रंग रती रहाओ। पाव मलोवो संग नैन पतीरी जहां पठावो जाओ ततीरी। जाप तप संजम देव जतीरी एक निमख मिलावो मोहे प्राण पतीरी। मान तान अह बिध हतीरी मान तान अह बुद्ध हतीरी। सा नानक सुहागवतीरी सुही महला पंजवा। तू जीवन तू प्राण अधारा तुझ ही पेख पेख मन साधारा।

सबना करे प्रतपाला। काया कामण सदा सुहेली गुरमुख नाम सुमाला। काया अंदर आपे वसे अलख ना लख्या जाई। मनमुख मुगद बूझे नाही बाहर भालन जाई। सतगुर सेवै सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा। इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ निद पाइय गुरु कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा।